तक तक तक तक तक तक तक तरे हो यति का दिन गयो बसेर के भयो काम गर्ने दिन सबै भाई हिँड ह ह ह ह ह हो रा

0: रंगाव दे देश मेरो एवरेस्ट
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै देश।

0: toilet bunny, yeah.
1: Extreme energy drink.
2: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
3: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदै छ नि। पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
2: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
3: 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियू, पिआइसियू, आइसियू, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
2: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
3: कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
2: सम्पर्क नम्बर 081-535-717।
4: कानके समस्या बा उपचार कराइकला कहाँ लैजिना हो?
5: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्रमा जाइन, वहाँ त अनुभवी चिकित्सकको वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कानके परीक्षण हुइट। ओत्रकेल कहाँ हो? वहाँ तो लम्बा समय से कान पक्ति रहना, जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान खजोइना, कान कम सुन्न, कान दम्म होइना बिरामी के उपचार ओ परामर्श, वो लम्बा समय से कान पक्ति रहले कान के जालिम पाल परल, कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुईट। वाकर संगे कान कम सुन्ना, विटामिन के लाग कान में लगाइना, सस्ता वो महंगा ढेर प्रकार के कान के मेसिन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए, जस्ते बीटीई, सीआईसी, आरआईसी जैसिन मेसिन फे वहाँ मिलाट।
4: ए ओसिड हो कलसे बुडु हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ट।
5: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा। बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ, फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने, राप्ती रोड बाँके। संचालक पूरण चौधरी। संपर्क नंबर 98-84-20-697, 98-85-23-697 वो 98-014-83-697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी।
3: आज म एकदम खुसी छु।
6: हैन, आज किन यसरी हाँस्दै आएकी छौ त?
3: आज मैले रेडियो कृष्ण शर्मा एउटा राम्रो कलेजको विज्ञापन सुने, मलाई त्यहाँको विशेषता एकदम मन पर्यो, म त भुल्लिने बाबालाई भनेर जान्छु।
6: ए हो र, ल ल भन न त, तिम्रो रोजाई कस्तो रहेछ, हामी पनि जानु।
3: ल सुन, त्यहाँ त गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक प्रविधिद्वारा अध्यापन र आफ्नै भवन सहित अत्याधुनिक सुविधा भएको नेपालगञ्ज 12 अवस्थित जिएम कलेजको बिबिएस प्रथम वर्षमा नयाँ भर्ना खुलेको रहेछ। अनि त्यहाँ त सिप अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिमहरू, पर्याप्त अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, एजुकेसनल टुर, सिए काउन्सिलिङ क्लास सञ्चालन, मोटिभेसनल क्लास, आइसिटी क्लास, एसी क्लासरुम, इन्डस्ट्रियल फिल्ड भिजिट, क्रिकेट मैदान, बास्केटबल कोर्ट तथा अन्य खेलकुदका क्रियाकलाप, क्यारियर काउन्सिलिङ, जब प्लेसमेन्ट तथा क्याम्पस सेलेक्सन लगायतका विविध कार्यक्रम रहेछन्। यो विज्ञापन रेडियोमा सुनेपछि मैले त यहीँ जाने निर्णय गरेँ। अब भन तिमीलाई मेरो निर्णय कस्तो लाग्यो?
6: हो रहेछ, एकदमै ठिक लाग्यो मलाई त। अब म पनि मेरो बहिनीलाई लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पास गराउन सफल कलेज जिएम कलेज नेपालगञ्ज 12 मुक्तिपुर बाँकेमै भर्ना गर्छु।
3: ल सुन, त्यसो भए 98-580-40-388, 98-045-086-26 र 98-580-85-040 आजै सम्पर्क गरेर विस्तृतमा कुरा बुझ है।
6: ल ल हुन्छ हुन्छ ल।
4: खुशी के खबर, खुशी के खबर। हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा डेटी आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा डेटी आयल बा। ई अस्पतालम रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढ्यार सेवा डेटी रलेक जानकारी कराइटी
5: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाँटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आइल बा
4: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेसर मुटु रोग पेट छाती कलेजो सम्बन्धी सक्कु उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे ओ और सक्कु सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनाक अंतिम शुक्रवार काठमाडौं मेडिसिटी अस्पताल के सुगर ओ थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराइदी
5: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डाक्टरन से हरेक महीनाक अंतिम शनिवार निशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जाँचमा 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चोक नेपालगंज संपर्क नंबर 081536465 98249806665 वो 98482804665।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: Sip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
3: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य शहर केंद्र जाओ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतने कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
2: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
3: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98480-2697 98580-2697 और 98014-83697
2: बहिरोपन निवारण कार्यक्रम में यहां सहभागी हुआ जाए।

0: नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
1: खुशी के खबर, खुशी के खबर। हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा। ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी।
2: जस्तक सर्जरी के सक्कू उपचार, परसुती वो स्त्री रोग के सक्कू उपचार, नसा व हड्डी रोग के सक्कू उपचार, मस्तिष्क वो मानसिक रोग के सक्कू उपचार, छाला रोग के उपचार, नाक कान घाटी रोग के सक्कू उपचार सेवा देती आयल बा।
1: ओस्तक सुगर, ब्लड प्रेशर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो संबंधी सक्कू उपचार, पैथोलॉजी लैब सेवा, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और सबकू सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी।
2: नोट, ई अस्पतालम कार्यरत सक्कू डाक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जाँच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज, संपर्क नंबर 081536465, 98249806665 और 98482804465।

0: रेडियो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्ण एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना।

0: तेरी।
1: मैं तो छेड़ूंगी, क्यों ना छेड़ूं। अब भाई जन्माष्टमी आने वाला है।
2: हाँ
1: हाँ, तो कैसे ना छेड़ी।
2: हम तो गाना गाइत रहा है वो।
1: अच्छा,
2: आप लोग झुक थोड़े करित रहा सकी।
1: अच्छा,
2: हम गाना गाइत रहा है।
1: लगा कि आप हमसे कहा तो का।
2: अरे अब बात ये है कि कल रक्षाबंधन खत्म हुई गवा। अब रक्षाबंधन के बाद अब मुड़ अब का सवार हुई गवा कृष्ण जन्माष्टमी। आपका नहीं पता है, याद नहीं है?
1: याद, अब याद ना होते तो हम कैसे कही थी।
2: तो
1: याद है,
2: वही से अब गीत संगीत का होता जब।
1: अच्छा, मतलब आपका भी खुमारी छावा है राधा बने की।
2: हाँ, ये बात तो सही कहे हो। अब राधा बने मतलब खुशी लागत है। अते गीत संगीत जब सुनो तब राधा तना मतलब जैसे लहंगा चोली पहन के है नी राधा बने में बड़ा। अब देखा जाए तो मोबाइल भरे में अब एक हफ्ता 10-15 दिन राधे ही राधा देखा पाइए, पर कान्हा जी कम दिखाई पड़ते हैं, राधा जी ज्यादा दिखाई लागत थी। कहे से आपका पता है कि राधा की संख्या ज्यादा है।
1: हाँ, राधा की संख्या तो ज्यादा है।
2: हाँ,
1: और
2: लेकिन फिर महा तो एक राधा जी के ज्यादा है, फिर यू जान लीन जाए।
1: जो जो मतलब राधा जी जो कृष्ण साथ में, कृष्ण भगवान के साथ में जो पूजी जाती
2: हाँ,
1: है ना,
2: हाँ,
1: उन ज्यादा है। तो अच्छा, मतलब आप शुरुआत में यहाँ गुनगुनाओ कि हमार भी ध्यान आपके तरफ।
2: आपके दिमाग आजकल बहुत बाद में लौट के आवत है।
1: वही तो कही
2: थोड़ी देर तो आप भूल जाते हो ना,
1: थोड़ी देर भूल गए कि हम आपके कार्यक्रम में यहाँ है। ऐसा का लगा का सखी कि आप हमसे कहा तो हम आपसे बात करी थी।
2: अरे तो हम लोग हैये हैं घर अंगना, अब हम लोग घर अंगना में हैये हैं तो सबके घर अंगना में हम लोग विराजमान हो ही जाये थे।
1: लेकिन सखी एक बात कही,
2: कहो
1: आप जो शुरुआत में बोले हो ना।
2: हाँ,
1: का कहे, अरे
2: हाँ, मोहे छेड़ो ना नंद के लाला,
1: तो इतना अच्छा लगा सच में। हाँ, बड़ा अच्छा लगा का। अब पूछो का है,
2: का है?
1: अब चारों तरफ से राधा तो... राधा है ना। हाँ, कृष्णा मतलब कृष्ण भगवान और मतलब जन्माष्टमी भी आने वाला है।
2: हाँ,
1: है ना। अब जब जन्माष्टमी होए के बाद घर घर सब लोग अपने मतलब कृष्ण भगवान के छठी भी करते हैं, है ना, घर में जो है कीर्तन भजन वगैरह सब कुछ करते हैं, तो अच्छा लगा थे का।
2: हाँ सखी, अब जैसे अब का होते है कि जहाँ जहाँ गावन माँ सहारन माँ जहाँ जहाँ अरे कृष्ण भगवान के मंदिर है ना।
1: हाँ,
2: ये मंदिरन का होते है कि अब जन्माष्टमी आए वाला। हाँ, है और आए वाला शुक्रवार के जन्माष्टमी है,
1: जन्माष्टमी
2: तो उके दिन का होते पूरा मंदिर के सजावा जाते है और साथ ही कृष्ण जी के 12 बजे जन्म उत्सव मनावा जाते है। तो अभी तो जन्म उत्सव खातिर मनावा जाए, उके बाद हफ्ता 10 दिन सब जगह कहे से कोई 5 दिन में छठी करत है, कोई 7 दिन में करत है, कोई 9 दिन में करत है, कोई 11 दिन में करत है। अब समय अनुसार कि सब जगह सब जना पहुंच पावे, कहे से पिड़िया खाए सबका वो रहत है सो है, और उसके बाद भंडारा भी होत है। तो ये जो अभी जन्म उत्सव है एक सब कोई घर में भी बहुत जना झूला डारत है वो मनावा जाते है। तो वही से दिमाग में कहा हम हूँ झूला डाली थे घर में।
1: अच्छा।
2: अब झूला डाला जाते तो क्या होते कि गीत संगीत उनके सवार हो जाते हैं हम लोगों के।
1: हाँ,
2: तो यही गुनगुनाइत रहा,
1: सावन उतरत और भादो लगत।
2: हाँ,
1: मन मा जैसे मन मा अजीब सा उमंग रहा था, अच्छा लगा था।
2: हाँ, तो सखी अब हम लोग तो इसे बतवाते रहा जी। और हम लोग कहे ना पहले कि घर अंगना माए गए हैं श्रोता, तो आप लोग के समझ आए। हाँ, सखी हमारे भूल गई रही कि हम लोग
1: इतना प्यारा सा गीत सुनाई के तो का
2: अब हमेशा आप गावत रही हो, आज हमका ला के हम ही गावत गावत आई गिन का, तो आप भूल गई कि आज की के मतलब को गावत है ये। हम लोग कहीं दूसरे जगह बैठे सोचे हो ने, लेकिन न सब आपके सामने बैठे हैं श्रोता, आप लोग के साथ भी बैठे हैं ना।
1: बगल इधर मुंह कर ली थे ना।
2: हाँ,
1: तो
2: सामने है इधर कर तो बगल में,
1: बगल
2: में। फिर भी आप लोग जब वीडियो देखा जाए तब देखा जाए कि सामने है कि बगल में। और 3 बजे तक हम लोग का साथ दिया जाए। तो हम सखी संध्या
1: और हम सखी चंदा
2: आप लोग के समझ आए गवागा है कार्यक्रम घर अंगनामा। आप लोग के गठरी तैयार सहित, तो ये गठरी के मारे हम लोग लावागा है राधा कृष्ण जी के, कि हम लोग का है कि आए वाला शुक्रवार के हमारे लोग के जन्माष्टमी राधा जी कृष्ण जी के मनावा जाए। तो हम लोग उस शुक्रवार के फिर दूसरे दिन आवा जाए, तो फिर छठी बाद में मनावा जाए। तब तक के लिए हम लोग सोचा के काहे आप लोगन से ये त्योहारन का छोड़ा जाए, आप लोग के साथ मिल के मनावा रहा जाए। और साथ ही सखी एक बात का एक रहा है कि ये तो हम लोग के साल भरन के हर त्योहार है, भगवान जी के भजन कीर्तन तो हम लोग का एकदम जरूरी है और है भी। नेपाल में जो ईसैत के परले जो हम लोग के लिए दुख के घड़ी है, वो दुख के घड़ी में कहे चाहिए थे कि जो ये तूफान जी का सुनामी कहा जाए, परले कहा जाए, जो कि ईसैत दुख के ऊपर दुख हम लोगों के देश के ऊपर काला छावा है नी, तो ये काला जो बादल है ये जल्दी से हटे और जो समस्या है वो समस्या के समाधान हो। कते घरन माँ कते घर बार नहीं रह गए हैं इन सबके खातिर, हम है ना बच्चे लावारिस हुई गए हैं, बच्चे नहीं रह गए तो कोई एक
1: जना बच्चे जान जा चुके हैं, कोई लापता है, कितने लोग लापता हाँ, है।
2: लेकिन हर खुशी तो, में एक खुशी के साथ साथ हम लोगों के एक दुख जुटा है। कैसे भी जो पर्व है पर्व का तो हर कोई भगवान के है कि हर कोई दुख के घड़ी में सुख में नया अगर याद करे तो दुख में तो जरूर याद करते है, जिसके कारण तो हम लोग के जन्माष्टमी तो हम लोग मनाते हैं। लेकिन जो भी घटना घटा है हर एक परिवार के करते हार्दिक श्रद्धांजलि कहे के चाहिए थे और विनती करे के चाहिए थे कि हर कोई जिसके जत्ता श्रद्धा हो सके हर कोई अपन अपन आप लोग सहयोग करा जाए, साथ दिया जाए। कहा ऐसे कहा नहीं तिनका तिनका जोड़ के हम लोग गठरी बना ली चाहते, तो यही तिनका तिनका हम लोग के देश के खातिर से काम लागे वाला चीज है। कहा कोई खाना नहीं पावत है, कोई भूखे है, कोई के पर छत, अब छत तो रही नहीं गा, घर तो रही नहीं गा, उसके बाद भी कोई के एक जीव बचा है, कोई दुई जने बचे हैं, कोई के अभिलाषे नहीं मिला है, ऐसे बहुत दुख के घड़ी है। फिर भी आप लोग साथ दिया जाए, आप लोग से विनती है, हम लोग भी आप लोग के साथ हन, देश के साथ हम लोग हन, तो आप लोग से भी यही आग्रह करे थे कि साथ जरूर दिया जाए। हम लोग के जो सरकार के कोष है
1: और
2: उस सरकार के कोष में जो आजकल मोबाइल में कई QR आए हैं, जोन तरीका से आप लोग तो जरूर सहयोग करा जाए, यही सलाह देख चाहिए थे। और सखी आप हाँ का कहा
1: चाहिए? नहीं सखी हम जैसे ये बात है जैसे तो एकदम दुखद घटना तो है ये ना है, और हम लोग भगवान से यही जो है मतलब आराधना करा जाए है ना,
2: हाँ,
1: प्रार्थना करा जाए कि सब कुछ अब ठीक होए और जन्माष्टमी भी आए वाला है। और कहा नहीं सकी कि यही महीना में ही कृष्ण भगवान के जन्म हुआ रहा है, जब संकट ज्यादा बढ़ गवा रहा है,
2: हाँ,
1: जब संकट बढ़ चुका रहा है, कहा नहीं है कि पाप के घड़ा जब भर जाता है या फिर धरती पर बहुत ऐसा ही अनहोनी चीज हो जाते है ना, तो फिर भगवान के ही सहारा हर लोग लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान के जन्म ही भादो महीना महीना ही हुआ रहा है 12 बजे रात के, तब सब लोगन के यहाँ बहुत आस रहा है ना, तो हम लोगन का भी आस करे चाहिए और उनसे प्रार्थना भी करे चाहिए कि भगवान जैसे आप आवाज ये जन्म हुए हुई वैसे ये धरती के धरती का आप संभालो, हम लोगन के रक्षा करो, ये प्रलय फिर ना आवे दोबारा, हम लोग यही प्रार्थना करा जाए।
2: तो ठीक है श्रोता, हम लोग आप लोगों के साथ रहा जी 3 बजे तक, और हमरे सखी हम आप लोगों के समक्ष आज जन्माष्टमी के चर्चा के साथ बातचीत किया जी, और साथ ही राधा कृष्ण जी के या कृष्ण जी के हम लोग गीत संगीत के साथ 3 घंटा आप लोगों के साथ साथ रहा जी। तो ऐसे ही वीडियो हम लोगों के कि कुछ क्लिप जो हम लोग तैयार करा जाते हैं सेव करा जाते हैं, पोस्ट भी करा जाते हैं, और साथ ही साथ हम लोग के व्यक्तिगत आईडी में भी पोस्ट शेयर करा जाते हैं। तो जरूर आप लोग बाद में भी कार्यक्रम सुन सका जाता है, और सुन के अपन मंतव्य अपन का लाइक कमेंट हम लोग का जरूर दिया जाए, सर सलाह के हम लोग के आवश्यकता रहता है, आप लोगों के सर सलाह से हमारे लोगों के हौसला बढ़ाते
1: हैं, तो आप लोग इनके सर सलाह के हम लोग अपेक्षा भी करा जाता है साथी।
2: हाँ तो सखी चला जाए हम लोग, अब बहुत ज्यादा बतवाई लिंगा है,
1: तो सखी ये बताओ कहाँ चला जाए, अब आप बताओ, अब बहुत ज्यादा बतवाए तो लिया गा है, लेकिन
2: कहाँ चला जाए वो आपके ऊपर है, अब आप बताए
1: तो ठीक है, ले चली
2: हाँ ले चला जाए,
1: तो चलो हम जहाँ चली थे वही चलो, और साथ ही आप लोग भी चला जाए, इसके बाद प्यारा सा गीत सुनते रह जी।
2: हाँ मथुरा वृंदावन हमारे सखी ले जाइए, तो चला जाए हम लोग साथ,
1: अभी महीना भर तो यही है,
2: ठीक
1: है, घूमने तो है मथुरा वृंदावन।

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स सबै सुविधा एउटै छानामुनि साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स कोहलपुर 11 बाँकी।
1: हजुर नेपाल अटो पार्ट्स भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स भरोसाको यात्रा।
2: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
3: हम भी पहले गैस्ट्रिक बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
2: सही वहाँ का सेवा मिलते है तो भैया
3: सुनो। हुआ औरतन के बाँझपन सफेद पानी महीनावारी में गड़बड़ी गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक बवासीर हर्निया अपेंडिक्स थायराइड पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
4: हाँ मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तह दिल हुआ जाए।
3: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786 98224 92377।
5: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
1: हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त?
6: तपाईलाई थाहा छैन नेपालगंजको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली।
1: हो र त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त?
6: एउटै छातामुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर उर्मिला पराजुली रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंचर पद्धतिबाट ठीक हुने रोगहरू हात खुट्टा नचल्ने मुख बाङ्गो हुने बाथ रोग ढाड दुख्ने मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
1: अनकल सेवाहरू
6: नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ हाड जोड्नी अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ। प्याथोलोजी भिडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे ईसीजी कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत दिशा पिसाब खकार थाइराइड बायोप्सी कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ।
4: डाक्टर भेट्ने समय सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 7:30 बजेदेखि 8:50 सम्म साँझ 5:15 बजेदेखि 7 बजेसम्म शनिबार र आइतबार बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म साँझ 3:30 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म
6: सम्पर्क फोन नम्बर 081-5-33-719 98-4-80-22-229 र 98-605-22-229।
1: कौशल्या मेमोरियल हस्पिटल द्वारा 1 महिने फ्री ओपीडी सेवा शुरू भएको छ।
7: कोहलपुर 9 हवलदारपुर स्थित कौशल्या मेमोरियल हस्पिटलमा स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म 1 महिनासम्म फ्री ओपीडी सेवा सञ्चालन भएको छ।
8: प्रदान गरिने सेवाहरू
1: गर्भवती जाँच सेवा
4: महिलाको तल्लो पेट दुख्ने समस्या, पाठेघरमा मासु पलाएको समस्या, यौनी चिलाउने समस्या, गन्नाउने सेतोपानी बग्ने समस्या, एप्टोपिक प्रेग्नेन्सी सम्बन्धी समस्या, निसन्तानपन सम्बन्धी समस्या, महिनावारीमा गडबडी, पाठेघरमा हुने क्यान्सर जाँच तथा सम्पूर्ण स्त्री तथा प्रसूति सम्बन्धी समस्याको चेक जाँच तथा उपचार गरिन्छ। यही श्रावण 15 गतेदेखि भाद्र 15 गतेसम्म फ्री ओपिडी सेवा सञ्चालन हुने भएकाले सबैमा जानकारी गराउँदै सेवा लिनका लागि अनुरोध छ। सम्पर्क कौशल्या मेमोरियल हस्पिटल, कोहलपुर 9 हवलदारपुर बाँके। सम्पर्क फोन नम्बर 081-41-40-07 र 98-482-63-399।
8: ओहो, घर त बनायो तर आफ्नो मान्छे कोही आयो भने घर पत्ता लगाउने गाह्रो।
9: किन गाह्रो? मार्बल पत्थरमा नाम लेखाएर राखे पनि भइहाल्यो नि।
8: भन्न त सजिलो छ, तर कहाँ खोज्न जाने होला?
9: तपाईँलाई थाहा छैन, नेपालगञ्ज फुलटेक्रा राप्ती रोडमा रहेको न्यू विश्वकर्मा कला सेन्टरमा मार्बल पत्थरमा नाम लेखाउनुका साथै तामा पित्तलमा कम्प्युटरद्वारा नाम लेखाइ गरिन्छ। समिल र सामुदायिक वनको टाचा बनाउनुका साथै विभिन्न किसिमका मार्बल सिमेन्टको मूर्ति पनि पाइन्छ नि।
10: प्रोप्राइटर राकेश कुमार विश्वकर्मा, व्यवस्थापक त्रिभुवन प्रसाद विश्वकर्मा, न्यू विश्वकर्मा कला सेन्टर, नेपालगञ्ज 5 बाँके।
11: सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 081-536-410 र 98-480-26-435।

0: सखी।
1: हाँ सखी,
0: मतलब गीत सुनत सुनत कहीं आप हुए तो नहीं हो मथुरा वृंदावन में, वापस आ जाओ। हम लोग कार्यक्रम घर अंगना में बैठे हैं ना, सखी लोग सहारा देखत हुई है तो उन्हों का तो कुछ बतावे पड़ा।
1: हाँ बतावे तो पड़ा ही। हाँ। आए गए हैं सखी, निश्चिंत रहो।
0: निश्चिंत
1: हाँ, गाना भी बड़ा अच्छा रहा है ना, यशोमती मैया से बोले नंदलाला।
0: हाँ,
1: राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला।
0: बस अपन बचपना भी याद कर लीजिए, और जो हम लोग के लड़के बच्चे चिढ़ावत हैं, जो परेशान करत हैं, वो हो याद कर लीजिए कि कान्हा जी कत्ते नटखट रहे हैं, उनका याद करा जाए कि उनका वखरी तक माँ बांधे रहे हैं। बताओ
1: वखरी से भी चले आओ,
0: माता जी परेशान हो जाती रही वखरी में बांधी ना है।
1: हाँ माखन चुरावे खातिर अगल बगल सब साथी अपने सखा लोगन के साथ में ज्यादा
0: गाँव घर के सब लोग परेशान भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मोह ममता स्नेह इतना ज्यादा है।
1: लेकिन फिर भी कान्हा जी कहते रहे मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया।
0: हाँ,
1: मुँह में लगा है माखन।
0: हाँ,
1: लेकिन
0: तो कसके कहते हैं कि हम खाए हैं, कहते हैं तो मारे जाइए, यही मारे नहीं कहते रहे। तो यही हम लोगों के जन्माष्टमी के दिन आवे वाला शुक्रवार के संध्या के उनके 12 बजे रात के जन्माष्टमी मनावे के, तो जन्माष्टमी के हार्दिक मंगल में शुभकामना
1: है।
0: और सखी आपका भी बहुत बहुत शुभकामना है।
1: सखी आपका भी बहुत बहुत शुभकामना,
0: धन्यवाद।
1: अग्रिम शुभकामना आप जैसे आए वाला है ना।
0: हाँ आए वाला है वही तो अग्रिम हम लोग भी कार्यक्रम में बतावा जाते, कहे से वो दिन तो अब बासी हो जावा जी, बाद में छठी मनावा जी।
1: हाँ बस छठी में बिजी हो जावा जी।
0: बिजी हो जावा जी, लेकिन कार्यक्रम में तो आवा जी।
1: हाँ, कार्यक्रम में आवा जाए और बात भी करा जाए।
0: तो कान्हा जी ऐसे हैं, ये है इनके मनाए थे धूमधाम से हर, मतलब ज्यादातर तो आजकल बहुत जन अपने अपने घर में भी झूला डाले लगे, कई सखी लोग मोहल्ला के मिलके रोज
1: कन्हैया जी का झूलावत भी है,
0: रोज भजन भी होते है और गीत होते एक आधा घंटा होते है, उसके बाद ऐसे जब तक छठी ना होता तब तक झूला जब से पड़त है तब से बधावा गीत संगीत उनके जन्म के उपलक्ष्य में गीत संगीत हुआ करत है, सारे भगवानन के भजन होते है। तो यही चीजन से अब क्या करना चाहिए कि अब उनके जन्म के खुशहाली में हम लोग हन, तो खुशहाली के जन्म
1: में रुकते हैं
0: नहीं रुक जाते हैं, ऐसा ना करा जी कि रुकते
1: तो
0: नहीं
1: तो है। लगे ना, रुक लो ना
0: आपका हंसी, तो फिर
1: हम आपके हंसी देख के हंसें
0: तो ठीक है, यही हंसी के ऊपर आप जान जाओ कि हाँ कुछ सुने के भी मन
1: अच्छा,
0: हुई कि हाँ, हंसी वही हंसी मिल जाएगा,
1: कि आपकी हंसी के इशारा हाँ, कुछ दूसरा है।
0: अब जब तक हम कुछ करबे ना तब तक आप हमका गीत संगीत ना सुनाइयो, है ना श्रोता, बात है कि नहीं है, जब तक कुछ कहबे ना तब तक सखी ना सुनाई है,
1: तो आपके इशारा समझो हसीन में ही छिपा है। हाँ। समझ गए सखी,
0: समझ गए बताए एक बात समझे हो, तो अब यही बात पर आप आंसर दो कि आप करियो का,
1: अब सखी का करी।
0: हाँ, बस का करी सखी, हमरे सखी अब विज्ञापन के बाद फिर गीत संगीत सुनाइये तो फिर चला जाए, देर काहे करा जात है,
1: जल्दी।
0: हाँ जल्दी,
1: कुछ और बात नहीं है, कुछ कर लो,
0: बात तो है बहुत है लेकिन आपके मन नहीं है जनो, अगर जल्दी है तो फिर गीत संगीत सुनाई दिन जाए,
1: नहीं थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ ना।
0: अरे रहा
1: है 2 मिनट,
0: अरे रहा है
1: कहीं झूला वोला झूले, अरे मतलब डाले हो कि नहीं, किसके नहीं है भगवान के,
0: अभी कहाँ डाला,
1: अभी डाला जी। अच्छा अच्छा,
0: अब आपे के वो अग्रिम है ताकि अभी कहाँ डाला जाए।
1: देखो हम भुलाई गए ना, आपके बातन में उलझ गए,
0: याददाश्त और भूल तो है।
1: लो ठीक है, तो चलो चला जा सखिया।
0: हाँ चला जा।
2: बीर डेंटल
3: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामी छाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
4: डाक्टर लामी छाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू, दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
3: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ,
4: फोन नम्बर 081-532-375।
5: माया बाबू टेलर के तो सक्कु सामान हो गिल बा, अब मशीन कहाँ से नन्ना हो।
6: छी दादू फिर ठहानी हो कि का उहट हो जे BS सिलाई मशीन सप्लायर्स।
5: BS सिलाई मशीन सप्लायर मा कौन कौन मेर के मशीन बैठे हैं बाबू?
6: वहाँ तो अनमोल उषा और ताज ब्रांड का संग मेर मेरी कंपनी का सिलाई मशीन बिक्री वो मरम्मत कई जिठा, एक रख संग संग मशीन संबंधी सक्कु पाठ पुर्जा वो सामान फे पाजी था, अट्रकेल कहाँ हो, कुशल कारीगर हुकन से मरम्मत फे करा जिठा।
7: एकक संगे दस्या देवारी हो छठ त्यौहार समय 5-30% समय ग्राहक उपकरण के छूट के व्यवस्था कैल बा।
5: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर घरबाई टोल 2 पीपल चौतरा नेपालगंज बाके एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी। प्रोप्राइटर भरत सिंह परियार मोबाइल नंबर बा 98481-28-318 और नंबर बा 98224-52-478 एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी।

0: Lebonia. Extreme energy drink.
1: नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङको फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ एनएमसी 19393 बिडिएस दिल्ली एफएजीसी मणिपाल सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक
2: विशेषताहरू दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने किरा लागेको दाँतलाई भर्ने दाँत निकाल्ने दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने मेटल क्राउन बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने सबै उपचारहरू दूरबिनबाट गरिने डिजिटल एक्सरे सेवा
3: सम्पर्क गणपति क्लिनिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने पासङलाम रोड जाने बाटोमा फोन नम्बर 081531366 र 98085049451
4: ओहो आज डाइह नै मजा लागत हो मजासे दवाई करेना कहटु
5: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइन पश्चिम नेपालकै अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगञ्जमा मिलत
4: ए बाट ठिक कैलो साच्ची कि अस्पतालमा काका सुविधा मिलत त
5: उहाँ त 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा दैनिक ओपिडी सेवा दूरबीन ओ लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाउ उपचार करना संगे एनआईसीयु पीआईसीयु आईसीयु हाईटेक अपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे उहाँ पा जाइत छोट बच्चा हो भर्खर जन्मल बच्चन के सामान्य से लैके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाइत
4: ए ओसिनो कला से उहाँ जाई मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह
5: हो तो स्वास्थ्यक हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081535717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमार स्नेह
6: बाबा के कान पिरात है दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई
7: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ न यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हरेक दिन कान परीक्षण किया जात है इतन कहाँ यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा जीर्ण रोग कान में यहाँ ढूसी भवा कान खजुआब कान से कम सुनाई देव कान बंद हो बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा कान के जाली में हो छेद भवा कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है बीटी सीआईसी आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है
6: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो
7: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98480-2697 98580-2697 और 98014-83697
6: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए

0: हाँ सखी,
1: हाँ सखी
0: कुछ बोलो ना, हम थोड़ा
2: मतलब अभी तक हम कम बोले रहे ना ने?
0: नहीं बोले
2: कुछ
0: तो
2: बोली
0: रहे।
2: अरे बोले के का है,
0: आप बोलते रहो हम सुनते रहे, जिसे का होते ना
2: सखी। एक बात का है हाँ। कि आज जन्माष्टमी के बारे में हम लोग कार्यक्रम मतलब बतावा जाते
0: हाँ, है कुछ बताओ ना
2: हाँ, तो और साथ ही साथ एक आपसे एक बात है कि अब गीत संगीत सुना तो राधा और कृष्ण जी के नोक झोंक वाला गीत संगीत सुना दो का।
0: अच्छा।
2: कि अब ना जाना जाता है कि कत्ता मतलब हाँ। नोक झोंक होता रहा है, अब नटखट दोनों राधा और कृष्ण जी के बचपना भी साथे बीता है, जिसके कारण से दुजना के नोक झोंक जो झगड़ा होते वो बड़ा नीक लागत है ना, बाल्यकाल से लेके मतलब जब तक देखो बढ़िया लागत है,
0: बाल्यकाल से लेके अभी तक जो है
2: हाँ
0: अरे
2: अभी
0: मतलब
2: तक हाँ चलते हैं उनके उनके बारे में गीत संगीत ऐसे नोके झोंक में बना था। तो कहा जाता है कि कृष्णाष्टमी जैसे मनावा तो जाए लेकिन इनके विष्णु जी के अवतार में है कृष्ण जी
0: हाँ,
2: और कृष्ण जी के अवतार में वो मतलब धरती पर आए रहे जिनका हम लोगों के यशोदा मैया उनका पालन रहा है नहीं, उनके पीछे भी पुराण के कथा है कि कंस मामा जो रहे कंस मामा का आकाशवाणी भवा रहा है जबकि उनके एकलौती बहन रही, और वैसे भी काल रक्षाबंधन रहा है आज भाई बहन के बात यहू में जुटा है, तो यही से अभीमा भी आकाशवाणी भवा की हाँ उनके आठवां पुत्र कंस के का हुई काल हुई
0: काल हुई है।
2: तो हाँ, मामा तो लोग के भी व्याख्या रहा था ना सखी, जैसे एक ठो शकुनी मामा है
0: हाँ,
2: एक कंस लेकिन, मामा
0: लेकिन,
2: है
0: लेकिन लेकिन सखी अभी जो है मामा के व्याख्या वो लंबा हो जाइए हाँ, अभी बहुत कम है
2: अच्छा,
0: अभी
2: अच्छा,
0: मामा के थोड़ा बात अभी अभी करा जाये,
2: चलो कोई बात नहीं है
0: मगर हम याद दिले पे आपका कहा कि हमों का सुने मन लागे जिसे अब जो है कहा कि मामा के व्याख्या
2: मामा के व्याख्या सुने मन लागे
0: सकुनी हाँ, मामा है ना
2: हाँ,
0: लेकिन महाभारत में रहे अब ये जो है कंस मामा रहे
2: कृष्ण लीला में
0: कृष्ण लीला में हाँ,
2: तो जरूर बातचीत करते राजा हाँ, सखी हमारे रोक दी इन्हें भाई हाँ, चला जाए हम लोग 2 बजे के टाइम चेक की तरफ है ना, फिर आवाज आते है कार्यक्रम घर अंगना
0: जी।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।
2: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे का है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताए दियो हमका।
3: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। वहाँ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल ड्रेसिंग टेबल दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जाते है।
2: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
3: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808245437।

0: sip on ya. Extreme energy drink.
1: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
2: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के

0: समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यह नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होत है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
1: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
0: सुनो, वहाँ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होत है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यो गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
1: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदर्ता कह के तह दिल हुआ जाए।
0: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377। सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आए
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना
4: घर अंगना।

0: सखी।
1: हाँ सखी,
0: याद है?
1: याद तो है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं ना, आपका बहुत धन्यवाद, हम कह रहे हैं लोग जोक वाला गीत संगीत सुनाओ, आप सुनावागा।
0: हाँ, हमका भी याद रहा है तो सुनाया दिया।
1: हाँ तो ऐसे हम हो गया याद, आप कह रहे हो मामा की कहानी, अभी बात मत सुनाया। तो मामा के कहानी के बात नहीं है सखी, विशेष मामे के कहानी नहीं है, कहा ना जाता है कृष्ण लीला के जो अवतार भवा काहे अवतार भवा उनके, उनसे कहानी मामा से जुटा है नहीं। जैसे मान लो भगवान कृष्ण का कहा जाता है विष्णु जी के अवतार हैं, और विष्णु जी के अवतार हैं तीनों लोक माँ, तीनों गुण माँ, गुणन माँ, सतगुण है नहीं, रज गुण और तमो गुण माँ, सतगुण विभाग से प्रभाव से हैं ही, मतलब जो सतगुण माँ इन आए रहे सत्यता के ऊपर आधार पर इनके जन्म भवा रहा है
0: सतयुग माँ।
1: हाँ तो ऐसे भगवान के अवतार हुए कारण से श्री कृष्ण जी के जन्म है नी, जन्म जो हम भवा रहा है उनके माता पिता हुए, जैसे मान लो उनके माता पिता रहे वसुदेव और देवकी जी है नी, लेकिन उनका फिर पाले वाली हमको हुए यशोदा मैया। तो अभी काहे भवा यशोदा मैया कैसे पाली, जबकि उनके महतारी बाप जीवित रहे, लेकिन इनके पीछे मामा की कहानी जुटी रही, जो आपको जाना जाता है कि कृष्ण जी के जन्म भवा रहा रात के 12 बजे
0: और कारागार में भवा रहा,
1: कारागार में भवा रहा है और जन्म भवा रहा है। जैसे मान लो पहले आकाशवाणी का भर, जैसे देवकी जी के शादी भवा रहा है, कंस जी के बहन हुए, अकेले बहन रही कहा थे, बड़ी दुलारी रही है नी, लेकिन उस समय में जैसे बिहार के विदाई कहके भेजे लागे रहे, तैसे आकाशवाणी का भवा की आपे के बहिन से आठवां पुत्र आपके काल हुई,
0: काल हुई है आपके, काल हुई है मौत के, तो यही कारण उनसे बचे के खातिर।
1: हाँ अब उनके अंदर बहन तो हुई गवा कि हमरे बहन के आकाशवाणी भवा है, हमार काल मतलब हम ही का चुनौती देते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकी। हाँ। जो कंस रहे वो उनके इतना घमंड और इतना उनका ताकत और अपने आप पर विश्वास रहा कि ऐसा हो ही नहीं सका थे, इसके कारण से उनका तुरंत विदाई न कह के कारागार में डाल दी।
0: कारागार में डाल दी है इमारे की निगरानी में रहे,
1: निगरानी में रही है इनके जत्ते पुत्र या जत्ते बच्चे हुई है, आठवां पुत्र हमार काल हुए कहते हैं, तो सबके हम बत कह दे न पुत्र बच्चे न रही हैं, तो हमार काल कैसे हुई, जिसके कारण से उनका कारागार में डाल दिया गया। कारागार में डाले के बाद भी एक पर एक जत, मतलब जो भी वंश उनके जन्म ली धरती पर आवे से पहले उनके मृत्यु पहले घोषणा कंस मामा कर दी।
0: हाँ, तो मतलब एक एक करके मतलब उनका मौत के
1: तो कहा ना जाते सखी की पहले से पाप के घड़ा तो पहले से भरा, जैसे कहा था मामा भांजा या भांजी का मारे भी ना छुए भी ना, जितना तो पाप होते है,
0: पाप होता
1: पाप लागत है, पुण्य नहीं मिला था, तो उसके सोचा जा सकी कि उनके सातों पुत्र का मतलब सात जो भी बच्चे भैं संतान
0: भाई रही,
1: हाँ सबके वो बद कह दी, अब पाप के घड़ा तो वैसे भी भरेगा।
0: हाँ हाँ, और सखी ऐसे ही जो है सतवा जब उनके संतान भवा,
1: हाँ
0: तो जब राव जब कंस जी का पता चला है, हाँ, ना हाँ, तो मारे तो खतर गए, तो वो जो है वो देवी रही,
1: हाँ, देवी
0: तो उनके हाथ से छूट के बस तुरंत जो है उनके हाथ से छूट के तो उन्हीं कहीं कि तेरा काल तो वहाँ कहाँ पर उनके जहाँ ले जाए,
1: हाँ, द्वारकाल जहाँ आपका जन्म हो चुका है, द्वारकाल
0: निश्चित है
1: ना।
0: तो सोचे भी लगे हुई है ना कि हाँ, कैसे कौन बीच में यहाँ आठवा पुत्र हुई कवा है ना, कैसे पहुंच गए, लेकिन फिर भी वहां पर भी उनका मारे मारे खातिर एक सी एक लोगन का राक्षस
1: हाँ, पता लगाए ना कि हाँ, कहाँ है भाई, जब हम इतने कारागार में बंद करे है ना, इतने पहरेदार हैं सब कुछ है, फिर भी हमार काल के जन्म हो चुका ओके पालन पोषण होत है, यही खबर सुन के उनके अंदर से थोड़ा वो हेगवा कि मतलब अत्ता कार्य के बावजूद भी अगर बच गया है तो पता लगाओ शुरू करी,
0: पता लगा
1: शुरू करी ना। जैसे कहा ना जाता है कि वसुदेव देवकी जी के कारागार में रहते रहिए भी उनका का हुआ, उन्हों के तो चिंता लगत रहा, सारे उनके जो कोख से जन्म लेते रहे हैं वो सबके बध हो जाता रहा, जिसके कारण से उनके बहुत इनके मतलब चिंता रहा है। तो मथुरा के जो बंदी गृह जन्म में जब कृष्ण जी के जन्म भवा रहा है उस समय तो हजारों पहरेदार तो
0: नहीं बैठ रहे, हजारों पहरेदार रहे हैं, और जो है कारागार भी बंद रहा है,
1: सब बंद रहा, उनके बेड़ी भी पड़ा
0: रहा,
1: लेकिन जैसे 12 बजे ठीक हुआ कृष्ण जी के जन्म भवा हमारे कान्हा जी के, उनके स्वागत होते ही सारे उनके हाथ फेर के बेड़ी खुल गए, सारे पहरेदार सब बेहोश के गिर गए, और जो हम लोग के कारागार के जो उनके गेट रहा है वो सीधा खुल गवा,
0: खुल गवा,
1: और उनका ये चीज भवा कि उनका एक टोकरी में बैठावा गा और कहीं जाके इनका छोड़ के आवे के, हाँ। नहीं तो इनके बद हो जाए, लेकिन जब वो टोकरी में बैठाए तो देखिन कि बाहर एकदम तूफान सैलाब जैसे कहा नहीं जाते ही महीना में जो हम लोगों के नेपाल में समस्या है ऐसा तूफान रहा है कि गंगा माता पूरा लहरन से ऊपर ऊपर तक बहत रहे।
0: हाँ लेकिन सखी ये जो है तूफान आप जैसे मतलब तूफान तो आवा लेकिन कहे आवा वो भगवान कन्हैया जी के दर्शन करे खेती
1: हाँ।
0: से आवा मतलब जैसे गंगा माता
1: हाँ तो वही चीजें तो इमा देखा रह सके जब वासुदेव जी उनका टोकरी में बैठा जाए लगे हाँ। तो इनके मनमा भवा कि हम गंगा कैसे पार कर पे अब कैसे हम छोड़ के इबे लेकिन जैसे जैसे वासुदेव जी पानी में मतलब जात रहे और कान्हा जी अपन पैर एक टोकरी से लटकाए दी तो माता जी उनके दर्शन पैर छुए खातिर जते लपकार भरे पैर छूते जाए जैसे छुई लेने के बाद माता जी पूरा शांत हो गई पूरा सूखा हो गया
0: नदी एकदम सूखा हो गया
1: हाँ अब बढ़िया से गए हैं गंगा जी के पार करके कान्हा जी का अब जहाँ छोड़े रहा वो आप लोग जानते हैं ऐसे कहानी में है कि उनका जहाँ छोड़े रहा जहाँ पालन पोषक रहा है माता उनके इंतजार कर रही थी यशोदा मैया तो पहले से अपने पुत्रन कतिर मतलब बच्चन कतिर वो पहले से इतना उत्सुकता रही कि जब उनके होश आवा तो देखिन उनके सामने कान्हा जी लेटी है
0: हाँ।
1: तो वो पूरा मतलब कान्हा जी के जहाँ पालन पोषण हो रहा है सुरक्षित रहे हाँ। अब उनका अवतार लीन न उनका वही चीज के सत्यता के जीत करहीन कर रहा है अपने माता रे बाप का भी बचावे रहा है
0: हाँ।
1: और जो मामा के अंदर जो कपट रहा है जो स्वार्थ रहा है वो चीज का उनका नाश भी करे
0: हाँ, जैसे
1: है।
0: कि जो मतलब कान्हा और कंस जी का जो अहंकार रहा है कि हम अमर हैं अमर अजर हैं मतलब हमार मौत हो ही ना सकत है तो उनका घमंड भी रहा है लोगन पे अत्याचार भी बहुत कर रहे हैं
1: तो यही चीजन के जीत करे खातिर सत्य के जीत करे खातिर कान्हा जी के जन्म भी भवा हाँ। रहा है और यही चीज का हम लोग भी 12 बजे रात के धूमधाम से सब घरन में का होते कि जो झूला डालत है और जहाँ जब मंदिरे रहते हैं सारा सजावट होते उनके डोली परत है और जब कान्हा जी के जन्म होते तब बड़े उत्साह के साथ तब तक भजन वजन होन करत है उसके बाद जब जन्म उनके जन्म उत्सव मनावा जाते है उनका रंगी चंगी कपड़ा पहनाए के नहवाए धोवाए के बाहर भी निकाला जाता है और उसके बाद फिर उनका झूला माँ बैठाए दिन जाते हैं तो जब तक छट्टी नए होते तब तक कान्हा जी झूला करते हम लोग भी झूलावा जावा जाते हैं नहीं सके
0: हाँ,
1: तो ऐसे झूला झूलते रहा जाए और हम लोग बातचीत करते रहा जाए लेकिन हमारे सखी अपने मन से याद ना करिएगा कि जब ज्यादा बतवाए लगा जाए तो बतवा जब बीच बीच में तो हम लोग का कान्हा जी के कुछ सुने भी तो चाहिए
0: ठीक है सखी सुने चाहिए बिल्कुल सुने चाहिए लेकिन बस ये 5 मिनट मिलने लगी
1: 5 मिनट न लगी सुने खातिर
0: हाँ,
1: 5 मिनट तो बहुत होते सके लेकिन फिर भी हम लोग इंतजार करते थे श्रोता आप लोग भी जावा न जाए गीत संगीत सुनते हो कार्यक्रम सुनते रह जाए।
2: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा तेस्रो तथा अंतिम भाग शर्मा जी को घरलाई भूकम्पले हल्लाइरहेको छ झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ सब धेरै डराएका हुन्छन् तर एक छिन में भूकंप रोकिन्छ शर्माजीले श्री एफई 550D ले बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन अनि त्यसपछि शर्माजी को परिवार को जिंदगी ढुक्कले चल्न थाल्छ अनि वर्षौं पछि फेरि एक दिन ठूलो भूकंप आउँछ श्री एफई 550D

0: कुष्ठ रोग अभिशाप न होए, इके उपचारों भी संभव है। वही से कुष्ठ रोग के बारे में हम सब लोगन के यहाँ जानकारी पावे जरूरी है।
1: शरीर में यहाँ न खजवाए, छुए से जान न मिले, लाल और खर्रहा दाग दिखाए तो कुष्ठ रोग के शंका कई सका जाते। असल लक्षण अपनक या तो दूसरे के यहाँ दिखाए तो जुड़तीन स्वास्थ्य संस्था में यहाँ जाए के जाँच करावा जाए। सब स्वास्थ्य संस्थान में यहाँ कुष्ठ रोग के दवाई निःशुल्क मिलत है।
0: समय में यहाँ उपचार यानी दवाई किए से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में यहाँ नीक होए के साथ है शारीरिक अपांगता होए से भी बच सका जात है।
1: जानकारी रहक चाहिए कुष्ठ रोग बीमारी से प्रभावित और उनके परिवार के यहाँ भेदभाव करब कानूनी अपराध हो। साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाके द्वारा जनहित में जारी संदेश।

0: हाँ सखी,
1: हाँ सखी,
0: तो जो है अब जन्माष्टमी के हम लोग तैयारी तो करा ही जाइए ना, अब शुरुआत हुई हुआ समझो भादो लगवा से।
1: हाँ भादो लगा है और शुरुआत है और चारों तरफ जैसे पत्ते चल जाते हैं, पहले से हम लोग मंदिर सबको धोवावे लागत है, सजावे लागत है, और कृष्णाष्टमी के दिन जन्माष्टमी के दिन संझा के सारी मंदिरन के खूब रंगी चंगी फूल गजरन से सजावा जाता है। और कहा जाता है कि इनके अभिषेक के नाम पर जाना जाता है कि इन विशिष्ट अनुष्ठान आधी रात का जो जन्म होता है, कृष्ण के जन्म में बहुत कम सटीक समय रहा है जो कि 12 बजे ठीक कहा ना जाता है कि जन्म होते हैं इनके, तो उस दौरान पर हम लोग कृष्ण मूर्ति का जैसे दूध दही और घी पानी स्नान सब पवित्र मतलब जैसे पूजा करा जाता है विधि विधान से, उनका नहावा जाता है, पूजा करा जाता है
0: जन्म के बाद।
1: और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक के दौरान में जैसे शंख बजाए के हम लोग जानकारी का उनके जन्म हो ही गवा कही के शंख बाजत है, घंटी बजावा जाते हैं, मतलब हल्ला और सारा चीजें कि मतलब उनके जन्म होई गवा, घंटी शंख पूजा आरती सब शुरू होए लागत है। और वही समय में भक्त श्री कृष्ण जी के हम लोग के कई प्रकार के जैसे कहा ना 56 भोग भोग भी लगावा जाते हैं, खाना के कई प्रकार के जैसे मतलब सारा चीज उनका नहाए धोवाए के उनका फिर हम लोग झूला में बैठावा जाते हैं, कृष्ण भगवान का झूला। अब छोटा बच्चा झूला में तो हम लोग तो गोदी में लेके हिलावा जाते हैं, झूला समान रहा थे, यही मारे उनका नहाए धोवाए के पूजा पाठ करके फूल अच्छत करके पवित्र मतलब एकदम स्नान कराए के उनका झूला में पहले बैठावा जाते हैं, और बैठाए के बाद फिर उनका धूप अगरबत्ती करके और भोग खानन के जैसे कई व्यंजनन के भोजन के उनके भोग लगावा जाते हैं। तो जी के जस हो पावत है सके, और ज्यादातर हम लोग का करा जाता है उपवास भी रखा जाता है
0: जन्माष्टमी
1: के निराजली में कई प्रकार के होते हैं, जैसे सब कोई पूरा सवेरे से निराजली रह के 12 बजे जब जन्म होता तब पानी पीते हैं और फरहारी करते हैं, बहुत जना कहते हैं 12 बजे जन्म होता तो भगवान के जो प्रसाद रहा थे ज्यादातर इमा पंजीरी के प्रसाद बनत है,
0: पुड़िया
1: बनत है, ऐसे चीजें बनत हैं जो कि वही के हम लोग प्रसाद और दही भी चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, पंचामृत पंजीरी खाए के भोजन एक व्रत के टाइम में जन्म के बाद पूजा पाठ के बाद खाते हैं, बहुत जना का है दिन भर और संजा के रात तक भी फरहारी रहत है। जी के श्रद्धा अनुसार जो जस उपवास रख सकत है रखा जाए, कैसे अपने शरीर के अपने आजकल के जो कई प्रकार के बीमारी भी रहते समस्या रहते जी के कारण से शक्ति जैसे क्षमता अनुसार आप लोग उपवास रखा जाए और यही अनुसार उनके जन्मोत्सव मनावा जाए। सबसे महत्वपूर्ण तो है पवित्र होकर हम लोग भी अपने आप का नहा धोए के थोड़ा पवित्र हो के उनके पूजा पाठ में लागा जाता है। तो सखी ऐसे हम लोग जब तक 12 न बजा जाता तब तक तो सहारा देखा जाता है ना,
0: सहारा
1: 12 बजे वाला है
0: कि अब भगवान जी के जन्म हुई है।
1: हाँ तो वही के खुशहाली के साथ हर्षोल्लास के साथ हम लोग गीत संगीत इनके भजन और साथ ही इनके जो बधावा होते नहीं है जैसे जब इनके जन्म होते तो बधावा बहुत मतलब इनके गावा जाते हैं, यही हमारे शुरू शुरू में हम गवते आए रहें कि कृष्ण जी के गाना याद करते आए रहें, तो सखी हमका टोकिन तो, है कि सखी काहे गाना गावा थी
0: तो ठीक है सखी अभी भी सुन ले और का।
1: हाँ तो हम तो
0: पहले से सुना जाए और का
1: पहले से सुने के तैयार है ना, और आप सुनावा भी गाए गीत संगीत ऐसे हम लोग आज विशेष कह के कृष्णाष्टमी के ऊपर बातचीत करा जाता है तो गीत संगीत भी वही सुना जाए
0: और कृष्ण जन्माष्टमी के गीत भी सुना जाए।
1: हाँ
0: तो चला जाए साथी आप लोग भी और जितने सखी लोग हैं आप लोग भी चला जाए और हम सखी दोनों लोग चाहिए।

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर दमदार परफॉर्मेंस र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्विस र स्पेयर्स सबै सुविधा एउटै छानामुनि साथमा फाइनान्स को सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स कोहलपुर 11 बाँकी।
1: हजुर नेपाल अटो पार्ट्स भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स भरोसाको यात्रा।
2: चर्चा छ मार्केटमा हाम्रो नाम घन्किन्छ।
3: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास होए वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है।
4: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथ गर्भपतन परिवार नियोजन के साधन बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है।
3: विशेष सुविधा
4: अब हरेक इतवार के दोपहरे 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए।
5: देर न कीन जाए आजे स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए। पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 रामलीला रोड नापी शाखा के अगारी। फोन नंबर 081 5 3 598।

0: कहे सखी कहूँ चली गई रही हूँ का उसकी कृष्ण जी का आज झुलावे चली गई रही हूँ आप हेराई गई रही हूँ ढूंढी थी इतनी देर से।
1: नहीं सखी अब कृष्ण भगवान के जन्मदिन तो मतलब गाना के अनुसार हो अभी भवन आई है मतलब गाना में हम लोग खो ही गए रहे ना
0: तो, ना खोवा
1: तो वही हम सोचित रहे कि अब तो अब कृष्ण भगवान के अब जो है माखन
0: बस वही तो आप कह रहे हो माखन चोरी समय के अंत में भी हम लोग आएंगे
1: याद आएगा ना कहा
0: तो इनके माखन चोरी जो नटखट जो उनके शरारती जो आदत हम लोग कहा जाते हैं लेकिन प्रभु जी के लीला कभी कोनो व्यर्थ नहीं रहा था ना सखी कि मतलब ये कहा जाते माखन चोरावत रहे अब कहा जाते चोरी करे का आदत गलत हो भी कहा जाते लेकिन उमा कोई ना कोई कारण या कोई ना कोई राज जुटा रहा जिसके कारण से उनके कृष्ण लीला में जो भी कार्य करिन वो कहीं ना कहीं से उनके जुटा रहा है। तो यहो का जैसे कहा था कि जैसे जैसे उनके गांव के जत्ते जिन माखन दूध घी जो रहत रहा है दही ऐसे उन लोग गोपिया लोग का करत रहे कंस जी के यहाँ शहर में जाके बेच देते रहे पैसा के खातिर जैसे व्यापार कराना आया था ऐसे बेच देते रहे तो वहाँ के जत्ते मतलब सैनिक खान पीन के कारण से उनके अब पावर भाई ताकत सब आवत रहा उनके कारण से जबकि उनके गाँव से जात रहा तो कृष्ण जी का करत रहे कि सारे शुरुआत अपन लीला से का शुरुआत करें कि तो छोड़ तो बच्चा तो रहबे करें अब वो का करें कि सारा सबके दही चोराए खाए ले माखन चोराए खाए ले या फिर जो गोपिया लोग जो उनके रही उनके मटकी फोड़ दें तो ये सब चीज़न से उनके शिकायत तो जाए लगी कि नटखट हैं लेकिन के कारण ये रहा कि बरू हम लोग खाए कि इधर के सब लोग खाई हैं तो इनके लोगन के ताकत आवे हम लोग मजबूत हुआ जाए और बाकी हुआ वो कंस के यहाँ न पहुँच पावे इनके कारण ही रहा जी के कारण से वो माखन चोराए खात रहे तो का करत रही गोपिया लोग थोड़े ऊंचे ऊंचे रखे लागी है ना शिकार बनाए के कहा रहे वहाँ टांगे लागी मटकी सब लेकिन फिर भी अपने सखन के साथ एक दूसरे के ऊपर लद के चढ़ के वो मटकी या तो फोड़ देते रहे या तो चोराए के कहूँ जाते रहे कि गाँव किनारे तलवाकदार है या बगीचा में जाते रहे खात रहे तो ऐसे शिकायत जात रही हमरे देवी की उनके यशोदा मैया के पास शिकायत जात रही तो कई प्रकार उनका सजाए भी मिलत रहा
1: है तो यशोदा मैया जो है किस भगवान का बांध देते रहे
0: हाँ मुंह में लाग रहा था लेकिन कह देते रहे कि हम नहीं खाए हैं
1: सब झूठ बोलती हैं
0: हाँ तो ऐसे इनके रहस्य इमा हर कार्य में इनके जुटा है जो कि इनके अवतारे भवा रहा है जिसके कारण से कि हाँ कंस जी के विनाश करे थे उनके वध करे थे तो उनके विनाश वध करे करे उनके बीच में कई प्रकार के जो सत्यता के जीत के ऊपर कई चीजन के कार्य करी ने जैसे कहा जाता है शेषनाग के भी है ना जीत करी ना है तो ऐसे बहुत सी कहानी जुटी है लेकिन इनके मुख्य धारणा का रहा है इनके जन्म का भव रहा है कि कंस के वध करे खातिर तो ये कृष्ण लीला के आधार में यह सारा काम करते जाते रहे तो इससे हम लोग अब समय के अंत में आए गए हैं सखी
1: हाँ सखी हम लोग समय के अंत में आ चुके हैं अब का है हम लोग बात बत कही तो अब यही विषय में भी करते रहा जाइए
0: हाँ करते रहा
1: अब जन्माष्टमी तक जिससे जन्माष्टमी हो जाइए इसके बाद छठी रही भी मतलब छठी हुई है उसके बारे में यानी कि कहे मतलब है कि जब जब हम लोग इनके कार्यक्रम पड़ी महीना मैया है ना तब हम लोग बात बत कही करा जाइए ये विषय में
0: तो ठीक है ऐसे जन्मोत्सव आप लोग मनावा जाइए आवे वाले शुक्रवार के जन्मोत्सव है जो कि आप लोग अच्छे से खुशहाली से हर्षोल्लास के साथ मनावा जाइए और शुभकामना है भगवान कृष्ण जी के जन्म उत्सव हम लोग भी मनाओ जैसे गीत संगीत आप लोग सुनते रहा जी कहा ऐसे हर जगह यही गीत संगीत सुने भी मिली तो आज के खातिर कार्यक्रम में आप लोगन के हम लोग यहीं तक साथ दिया जाता है और अभी तक एक समय भी आएगा है तो इससे पहले सखी जो अत्ता बढ़िया गीत संगीत सुनाइन है हमरे कान्हा जी के तो सखी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है सखी ऐसे कि संगीत प्रोग्राम से हम लोग जो कार्यक्रम विषय वस्तु चलावा जाते हैं वही विषय वस्तु अनुसार गीत भी ढूंढा जाते हैं लेकिन क्या करा जाए अवधि भाषा समुदाय के गीत संगीत हम लोग का उपलब्ध करे थोड़ा समस्या है जिसके कारण से हम लोग तो हिंदी गाना भी बजावा जाते हैं उनके भी हम लोग का है अपने आप का समस्या है लेकिन अब अवधि गाना कहाँ से खोजबीन के लावा जाए उस चीज़ के हम लोग खोजबीन करते हैं लेकिन मिलब थोड़ा संख्या कम है तो यही कहते हैं आप लोगन का अभी जो हम लोगों के देश में भी समस्या है उस समस्या का समाधान आप लोग भी अपने आप के सतर्क रहा जाए और जो भी संगी साथी हैं घर परिवार हैं जो कि आप लोगों के दूर दराज के रिश्तेदार हैं उनका साथ दिया जाए और सरकार के साथ हाथ मिलावा जाए हर एक दूसरे का जो हम लोग सहयोग कई पावा जाए करते रहा जाए यही कहते हैं आप लोगों से विदा लिया जाए तो आज के कार्यक्रम घर अंगना से हम सखी संध्या
1: और हम सखी चंदा।
0: तो आपके कार्यक्रम कस लाग और ऐसे कृष्णाष्टमी जन्मोत्सव मनाते रहा जाए, कहे से हर जगह पहले से मनावे लागत है तो ऐसे मनाते रहा जाए, यही शुभकामना है आप लोगन के। शुभकामना के साथ विदा दिया जाए। नमस्कार, नमस्कार, राम राम, राम, राम, शुभ दिन, शुभ जन्माष्टमी,
1: शुभ जन्माष्टमी।

0: बीर डेंटल
1: नेपालगंज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेन्टलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
2: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
1: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
2: फोन नम्बर 081-532-375।
3: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे के रहा है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
4: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
3: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
4: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844-88-3575 और 9808-25-40-37।
5: नींद ना हमको हाय जब सोना
3: है। बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
6: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोग उनके दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
3: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
6: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके, संचालक पूरन चौधरी, संपर्क नंबर 9840-20-697, 9850-23-697 और 9814-83-697।
7: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
3: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पिराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं, कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
6: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। हुआ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
3: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
6: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
8: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहदिल हुआ जाए।
6: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 97649 11786 98224 92377।
9: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
10: Back to back.
11: In this song on
10: Stay tuned.

0: से तेरा।
1: जब खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 98025 32568।
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।
3: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान
4: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि